0: को दूर करें, हाफजा तेज करें और खून की कमी को पूरा करें। मैदे की गैस, जलन, तेजाबियत, बदहजमी और मैदे का दर्द खत्म करें। बवासीर, खूनी उबादी, कब्ज और मतली में मुफीद है। मालिश के फवायद: सर दर्द, कमर दर्द, पठों का दर्द और जोड़ों के दर्द से पाए निजात। बालों को लंबा, घना और सिया चमकदार बनाए। खुश्की और सिकरी और सर की जिल्द के दानों से निजात दिलाए। बच्चों के चलने में दुश्वारी को खत्म करे। फालिज के मरीजों और हर कस्म के जख्म के लिए भी मुफीद है। जिस्मानी थकावट, जहनी सुकून, हर कस्म की एलर्जी के लिए भी मुफीद है। तरीका इस्तेमाल: सुबह के वक्त निहार मुंह 2 चम्मच 1 कप पानी या दूध में मिलाकर पिए। आसमानी हर्बल ऑयल वाहिद वो तेल है जो अंदरूनी और बैरूनी तकालीफ के लिए यकसा मुफीद है। राब्ते के लिए कॉन्टेक्ट 0345923-2860।
1: आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम कुदरती अज्जा से तैयार करदा जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम का रोजाना इस्तेमाल आपके चेहरे को बनाए तरोताजा। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम आपके चेहरे से दाग धब्बे, कील, मुहासे, छाइयां और आंखों के गेट स्याह हल्के खत्म करे। आपके चेहरे, गर्दन और हाथों की झुर्रियां खत्म करे और आपकी उम्र को छुपाए। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम में सनब्लॉक की इजाफी खसूसियात मौजूद है जो धूप के मौजूद असरात से आपके चेहरे को रखे महफूज। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम की मुनफरद खुशबू और विटामिन दे आपको ताजगी का एहसास। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से 5 दिनों में पाए निखरा, शफाफ, बेदाग, गोरा चेहरा। बेहतरीन नतीज के लिए आसमानी फेस वॉश या आसमानी ब्यूटी सोप से चेहरा अच्छी तरह धोकर खुश्क कर लें। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम की थोड़ी सी मिकदार लेकर चेहरे पर लेप करके हल्का सा मसाज करें। सुबह उठकर आसमानी फेस वॉश या आसमानी ब्यूटी सोप से धो लें। आसमानी कॉस्मेटिक्स जो नाम है एतमाद का। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस 0345923-2860 0300-585-8481।
0: आसमानी हर्बल ऑयल 100% ऑर्गेनिक, न्यू हेयर ग्रोथ, खाने के फवायद, जिस्म की इजाफी चर्बी और मोटापे को कम करे, ब्लड प्रेशर और शुगर को नॉर्मल रखे, मर्दाना कमजोरी को दूर करे, हाफजा तेज करे और खून की कमी को पूरा करे, मैदे की गैस, जलन, तेजाबियत, बदहजमी और मैदे का दर्द खत्म करे, बवासीर, खूनी उबादी, कब्ज और मतली में मुफीद है। मालिश के फवायद: सर दर्द, कमर दर्द, पठों का दर्द और जोड़ों के दर्द से पाए निजात। बालों को लंबा, घना और सिया चमकदार बनाए। खुश्की और सिकरी और सर की जिल्द के दानों से निजात दिलाए। बच्चों के चलने में दुश्वारी को खत्म करे। फालिज के मरीजों और हर कस्म के जख्म के लिए भी मुफीद है। जिस्मानी थकावट, जहनी सुकून, हर कस्म की एलर्जी के लिए भी मुफीद है। तरीका इस्तेमाल: सुबह के वक्त निहार मुंह 2 चम्मच 1 कप पानी या दूध में मिलाकर पिए। आसमानी हर्बल ऑयल वाहिद वो तेल है जो अंदरूनी और बैरूनी तकालीफ के लिए यकसा मुफीद है। राब्ते के लिए कॉन्टेक्ट 0345923-2880

चल खे बटा ग्राम कलाज मेरा बर टंडोल कुछ टंडोल जिसोल राजदारे पेमाल डबरे कारवाड़ चेर तेरा शे अल्लाह मुबहा जमा खिस्त मीना वालो जमा खगु मीना वालो चर तबुम नजे मंग सरा ओसे जू सोंगाड़े था ब्यारा जू चरतम मजे।

मैं अभी बात कर रहा हूं, मैं बाद में करूंगा, मैंने पहले बात की है, मैं अभी कर रहा हूं, तो हम क्या करेंगे, हम एम यूज करेंगे, आई मैं हूं, तो मैं एम आई के साथ हम एम यूज करेंगे, और ही शी इट या सिंगुलर के साथ हम इज यूज करेंगे, और वी यू दे अब्दुल के साथ हम क्या करेंगे, हम आर यूज करेंगे, सही है। तो चलिए, ये हमारे पास ये काम क्या करता है कि हमें बताता है किस चीज के बारे में, बताता है जमानों के बारे में, हमें बताता है कि काम कब हुआ है, काम कब होगा और काम हो रहा है, काम कब होगा, काम हुआ है और काम हो रहा है और काम होगा, होगा होता रहे हो रहा होगा। जब हम छोटे थे ना तो हमें, हम जब पढ़ा करते थे तो वो कहते थे हो रहा होगा, ता रहा होगा, ते रहे होगी, ती रही होगी, तो इस तरह हमने पढ़ा था, हम हंस हंस के उसको पढ़ा करते थे, बड़ा मजा भी आता था। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे में हमने ये पढ़ा था कि टेंस जो है टेम्पस, ये हमारे से निकला है टेम्पस से, और इसका मतलब है टाइम। हम फिर टाइम को डिवाइड करते हैं, प्रेजेंट हमारे देन सेकंड कैटेगरी पास्ट द पार्ट द टाइम दैट इज पास्ट, वी कैन नॉट टेक इट बैक, ओके। एंड द थर्ड टेंस the third tense, well, future, okay, so we cannot know about the future, what will happen, okay, so we say tense, we are divided into three category, number one present, the time, now, yet, and the second future, so we have no idea about the future, and the third one is past, the past, the time that passed, so we cannot take it back, so we say that the tense is divided into three category, okay. Tense sikala mung khabar kare wa mung patri padri sawar type kota ko ki taqsim padri padri pa khano ki mung taqsim kare diya ul ha waqt de ha lamhi ha lahze cha mung sara tiri shwi diya ki mung wayu mazi ya wa mung past wayu bal mung sara ha wa ha lamhi ha lahze cha mung sara usti age mung wayu present now بل څنګه موږ سره هغه وخت چې هغه مونږ نه دی لیدلی نو هغه ته مونږ وایو فیوچر هغه برازي آی هاف نو ائیډیا اباوت د ټمارو مونږ ته سبا باندې هیڅ پته هم نه سچې وات ویل بی هپن چې سبا واقعیا کیږي اوکې نو دا مونږ ټینس خبره کو بل څنګه موږ سره ریکوست نه پاره یوز کیږي لکه دا سما دا وی چې بیا موږ نو ډیټیل سره وایو پټینس کې هغه خدا سوس لګ لګ شاندې کو واځي حکومت چې سنگ امنگ سر یوز کی گی دامنگ سر دامنگ سر کوئسن دبادا سر یوز کی گی لکا ایم آئی سپیکنگ کیا میں بول رہا ہوں بیسی کم دینو ایز ہی رائٹنگ ہے کیا اس نے خط لکھا ایز ہی رائٹنگ کیا اس نے خط لکھا اچھا تو ہمارے پاس پھر ہم آگے بڑھتے ہیں ہم موڈ میں بھی یوز کرتے ہیں اپالوجی او میں نے ایک بڑی وہ کیا کہتے ہیں کہ کچھ میں نے گڑبڑ کری سوری सबसे पहले हम क्या करें टेंसेज में फिर उसके बाद हम मूड में यूज करते हैं मूड में किस तरह मूड में इस तरह हम यूज करते हैं कि हम नेगेटिव में यूज करते हैं और हम पॉजिटिव में अफर्मेटिव में से कहते हैं और हम कमांड में भी यूज करते हैं जब हमने पढ़ा था सेंटेंस में डिटेल के साथ कि हमारे पास कंपेरेटिव हमारे पास क्या होता है कंपेरेटिव इंपेरेटिव भी होता है हम और फिर हमारे पास नेगेटिव इंट्रोगेटिव और एक हमारे पास सब्जेक्टिव सेंटेंस और एक अफर्मेटिव तो हमने इसमें डिटेल के साथ ये बातें की थी फिर मैं आप लोग को समझाऊंगा जब हम इस पे और बातें करेंगे लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं है तो इसको हम नहीं देख सकते फिर हम पढ़ते हैं क्या पेशियों में तो हम इस तरह कहेंगे कि एक बंदा है अली वो क्या कर रहा है वो सेब का रहा है अली is eating an apple wo sev kar raha hai to hum iska pesio banate hain to hum kahenge the apple was eaten by ali ali ne sev ko khaya tha sev khaya gaya kis qadar se ali ke zariye se ali is eating an apple aur agar hum iska pesio banate hain to hum kahenge the apple was eaten by ali ali Ali kya kar raha hai wo sev kar raha hai Ali Ali is eating an apple wo kya keh raha hai mera pata nahi zuban atak raha hai Ali is eating an apple aur agar hum isko passive banate to hum kahenge ab is tarah kahenge ke the apple was eaten by Ali okay हम पेशी में भी यूज करते हैं और फिर हमने कहा था मोड में भी यूज करते हैं तो मैंने आप लोगों को बताया कि इम्पेरेटिव और नेगेटिव और सब चीजों में हम इसको यूज करते हैं ओ
اوکے جی ٹائم ہمارے پاس ابھی کیا ہے کہ آپ لوگوں کے میسیجز اور کال کا سلسلہ شروع ہو جائے گا.

अच्छा जी, फर्स्ट मैसेज जो तो वो क्या कहते हैं कि हम इस पे इसकी तरफ आते हैं, और नेक्स्ट में हम प्रॉपरली हेल्पिंग वर्ब जो है हमारे पास बी है, हैव एंड डू, इस पे हम डिटेल से बात करेंगे. लेकिन अब हम आते हैं कि आप लोग के जो मैसेज आए हैं या इस तरह के आप लोग के जो इश्काल है उसको हम क्लियर करते हैं. तो ठीक है, देखते हैं हमारे पास सबसे पहले मैसेज आए हैं. अस्सलाम वालेकुम सलार भाई, सुबह को गुड मॉर्निंग कहते हैं, फजर और जुहर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई एम अच्छा ठीक है, गुड मॉर्निंग सुबह को कहते हैं. एक होता है हमारे पास सुबह सादिक, एक हमारे पास होता है सुबह काजिब. जो हमारे पास सुबह काजिब होता है यानी सुबह से पहले जो तहज्जुद का टाइम होता है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे से पहले. जो हमारे पास आता है मॉर्निंग यानी सुबह, उसको हम एक और नाम से भी पुकारते हैं, उसको हम डॉन भी कहते हैं. क्या कहते हैं? डॉन भी कहते हैं, या सनराइज भी हम इसे कहते हैं. ओके, जो सुबह का वक्त होता है जिस टाइम सूरज वो क्या कहते हैं कि वो नहीं, मॉर्निंग भी कहते हैं और राइज भी हम उस वक्त को कह सकते हैं. ओके, और अगर हम बात करें जो हमारे पास टाइम है वो जो जुहर वक्त है, ये जो हमारे पास वो क्या कहते हैं, एक हमारे पास नून आता है. नून हम दोपहर को कहते हैं, और जो हमारे पास सपहर आता है, दोपहर किसे कहते हैं? पुख्तों की होता है सो गर्मा आया दोपहर से कम या कि तमंग सो या कि तमंग नून या यू पेजी कम द मास पखिनी दा वक्त या कि तमंग आफ्टरनून भी आवाई आंसर याद हो सकते हैं. जो हमारे पास वक्त है जो जोहर के बाद आता है उसको हम क्या कहेंगे? जो हमारे पास जोहर इसका अपॉलॉजी उसका हम आफ्टरनून कहते हैं, और जो हमारे पास नून है इसको हम क्या कहते हैं? दोपहर कहते हैं, और फिर हमारे पास सपहर आता है. तो आप लोग इसको जेनेशन करना है. और अगर आप लोग के मैं थोड़ा सा और वाजह करूँ, जो हमारे पास पी एम और ए एम है, पी एम का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियम यानी नून से पहले, और ये कौन सी जबान है? लेटन है, लेटन है या कोई, मेरे जहन में भी नहीं लेकिन मेरे ख्याल से लेटन है या वो क्या है यार, मैं अभी बोल रहा हूँ उसको. लेकिन इसको इसी जुबान में क्या कहते हैं कि मेरिडियम कहते हैं. तो हम कहेंगे कि पोस्ट मेरिडियम या एंटी मेरिडियम. पोस्ट मेरिडियम कहते हैं यानी जो हमारे पास दोपहर के बाद जो वक्त होता है. तो हमारे फोन में भी क्या है? पीएम है, पोस्ट मेरिडियम है हमारे पास. ओके, जब वक्त जाता है और हम आगे देखते हैं, हमारे पास जो वक्त आता है जिसको हम असर कहते हैं, तो उसको हम कहेंगे बिफोर इवनिंग हम इसे कहते हैं, या इसको हम एक और नाम से पुकारते हैं, उस मेरे ख्याल से उसको डस कहते हैं या इस तरह, यस इसी तरह कोई नाम है उसका. फिर हम जाते हैं हमारे पास वो क्या कहते हैं कि नाइट आता है हमारे पास इवनिंग, इवनिंग के बाद हमें हमारे पास मिड, हमारे पास नाइट आता है, और नाइट के बाद हमारे पास मिड नाइट आता है. ओके, तो हमारे पास जब मिड नाइट आता है और मिड नाइट के बाद हमारे पास वो जो ए एम शुरू होता है, तो उसको हम कहेंगे एंटी मेरिडियम, यानी वो जो दोपहर है उससे पहले का वक्त, उसको हम क्या कहेंगे? एंटी मेरिडियम. अभी मैंने आप लोगों को वो जो इश्काल है, वो जो आपके सवाल है, उसको मैंने क्लियर किया. अगर फिर भी समझ में नहीं आया है तो मैं आप लोगों को समझाऊंगा. ओके, कोई मसला नहीं. आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम में मैसेज. Thank you so much for your text in our show. May Allah give you the bundle of happiness. Next message ki taraf jayenge. Next message of the show was, Assalamu alaikum, Mr. How are you? Our show is very nice and welcome to the show. Thank you, Mrs. Mafia Queen. This is, she was Mafia Queen and she texts in our show. May Allah give you the bundle of happiness. I am very thankful to you to have to text in our show. मेरे को इंग्लिश सीखना है, मैं क्या करूं उसके लिए, कैसे सीखूं? अच्छा, इंग्लिश के लिए मैंने आप लोगों को पहले बताया, जब हम किसी लैंग्वेज को सीखते हैं तो हम किस तरह सीखते हैं लैंग्वेज को हम किस तरह सीखते हैं, हम इस तरह इंग्लिश को लैंग्वेज को जब हम सीखते हैं तो हम दो तरह से सीखते हैं. एक तो हमारे पास ये है कि हम इसको कैसे सीखेंगे कि हम ग्रामर को यूज करेंगे, और दूसरे हमारे पास है कि हम उसके लिए इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं.